0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला विटू क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860 0300-585-8481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ। खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, होनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को

लंबा घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरे और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर कस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट जहनी सुकून हर कस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345 923 2860।

0: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद सियात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और वाइटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीजे के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923280 0300585848481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ। खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर कस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर कस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345923280।
2: बोगस की नाव बदना किशुआ फूर पकूर दुश्मन शुरूर जरूर दानख दकियामत दिए।

हेलो हेलो, बिल्कुल जनाब, तू दोबारा काला सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम असलाम। खई मजा की छेस की खुदा जालिमान। असलाम वालेकुम निजाम भाई, गुड मॉर्निंग।

वाह भाई, जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। वाह, देर खेस्ता। जिंदगी एक किताब है। पहला सफा पैदाइश, आखिरी सफा मौत है, दरमियानी सफा खाली है, इसमें जो पसंद है लेके, बस ऐसा कुछ लेके कि अल्लाह को दिखाते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो। देर खेस्ता, देर कुल वही कहना दी जिंदगी लाओला ने किताब पैदाइश द्वेम सफा खाली और द्रेम मर्ग पदे मन सफा की दास सहूली गई चिबे अल्लाह पाक तो शर्मिंदा ने नदा से वकू कहना तो मशरा ख्याल बसा तू दमा खिस्ता मीना वालों।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कान।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: ग्रानो रिदुन को द अमन रेडियो FM 88.4 बटाग्राम दे दा वक्तासो जमुंगा इस्लामी नशरियात आ रही।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटाग्राम ट्यून किया।
0: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड खिलाफ दौरे लपारा कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम स्क्वाड ऐलान करी दे द कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम कप्तान युजल बिया बबर आजम मुकर्रर शवी दे वले शहीन शाह अफरीदी नुमान अली और हसन अली द टेस्ट स्क्वाड न बाहर कड़ी शवी दे कौमी टेस्ट टीम स्क्वाड के बबर आजम आमिर जमाल अब्दुल्ला फजल अली उस्मान अजान अवेस इमाम उल हक खुरम शहजाद मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अली मोहम्मद रिजवान मोहम्मद अवेस जफर मोहम्मद गाजी होरी साजिद खान सलमान अली आगा शान मसूद उबेद शाह शामिल दी अवली सूद शकील बद फिटनेस नबाद टीम की शामिलेगी वॉलीबॉल हुआ द इंग्लैंड लोभाड़ी जेकब बेतल तेज बैटिंग मुजाहिरा कर दा इंग्लैंड द्वम टी ट्वेंटी मैच के भारत सलोर विकेटों से शिकस्त वर कर दी भारत अवल बैटिंग का उलसरा मुकर्रा ओवर्स के यूसल यूनवी रन जोड़ कर दी इंग्लैंड टीम सलोर विकेटों से भारत त शिकस्त वर कर दी इंग्लैंड द भारत खिलाफ पिंजर टी ट्वेंटी मैच सीरीज के यो बरतरी हासिल कर दा वजह दिवीची सीरीज ओलनाई टी ट्वेंटी मैच द बरान लवजी मनसूख करी शव्यो वॉलीबॉल रहता फीफा रवान वर्ल्ड कप के फ्रांस पेरागोइता इवेंट द्वम प्री क्वार्टर फाइनल के शिकस्त वर कड़े दे और क्वार्टर फाइनल लपारे क्वालिफाई करेदा फिलाडेल्फिया के लुबिदली मैच के द्वारो टीमों ने सख्त मुकाबला करेदा अव्वल हाफ के द्वारो टीमों ने हम यो गोल न दे कड़े वाली पदवियम हाफ के फ्रांस यो गोल कड़े दे जे दगाशाने पेरागोई तो शिकस्त वर कड़े और क्वार्टर फाइनल तय क्वालिफाई करेदा मौसम हाल दो मौसमियात महकमे तर महातिर सलविश घंटों पर दौरान करकल की मरवत बनो और टांग खोश सीम के मौसम चो गरम और जीन वालों के नारे बरान शविदे दो मौसमियात महकमे लखवावली शविदे चिरातरुन को सलविश घंटों पर दौरान व करकल की मरवत